0: जी हाँ बिल्कुल, हैप्पी हैप्पी संडे सभी, आप सभी का हम रेडियो के जे रामायण संडे पर स्वागत करना चाहते हैं। जी भी आज का टॉपिक है ब्रेकअप सॉन्ग्स।
1: जी आज का टॉपिक है ब्रेकअप सॉन्ग्स। दिल किसका नहीं टूटा है, आपके कृष जी का तो काफी टाइम टूटा है, हमारा भी टूटा है। आई एम श्योर कि आप सबका कभी ना कभी दिल टूटा ही होगा।
0: प्रतीक का दिल तोड़ने वाला आज तक दुनिया में पैदा नहीं हुआ या पैदा नहीं हुई।
1: हमें लगता है कि प्रतीक का भी दिल टूटा है। जी
0: नहीं, हो नहीं सकता।
1: ऑफ कोर्स हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। वैसे ये प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, शायद हम पब्लिक में नहीं शेयर करना चाहे। बट अगर आपका कोई फेवरेट ब्रेकअप सॉन्ग हो या आपको याद होगा कि जब आपका दिल टूटा था या आपने किसी का दिल तोड़ा था फॉर सम अननोन रीजन। आपको पता है क्रिश जी, कभी कभी दिल जो टूटता है या दिल जो तोड़ते हैं वो इंटेंशनली नहीं तोड़ते हैं। ऐसा कुछ हो जाता है कि शायद दिल जुड़ ही नहीं पाता, जैसे माँ बाप का प्रेशर, फैमिली प्रेशर, जैसे घर पे एज डिफरेंस का प्रेशर, कास्ट का प्रेशर, यू नो रिलीजन का प्रेशर। तो ऐसा नहीं है कि शायद लवर्स दिल तोड़ना चाहते हैं एक दूसरे का, ऐसा होता है कि प्रोसेस में शायद वो रिश्ता बन ही नहीं सकता। तो ऐसे टाइम पर भी आपके दिल में कोई ना कोई गाना होगा, राइट?
0: जी बिल्कुल। और अगर आज आपको पास मौका है, आप अपना गाना का रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। मनमोहन सिंह जी कैसे हैं, रितु पटेल जी हेलो क्यूरी, हाउ आर यू, हाउ इज बयान, आप दोनों का स्वागत करना चाहते हैं।
1: प्रतीक जी कह रहे हैं कि भाई मेरा तो दिल एक एक सेकंड होता है, एक एक सेकंड पे टूटता है, शायद वो यही कह रहे हैं।
0: हाँ लगता है अभी क्या, बिल्कुल बिल्कुल, डर डर दिल में से जब निकल जाता है बच्चों का तो यही होता है। पर यस, आज का हमारा जो टॉपिक है ब्रेकअप सॉन्ग, तो आप भी हमें बता सकते हैं। इफ यू आर लिसनिंग टू अस नाउ, इफ यू हैव जस्ट जॉइंड अस, लेट अस नो आपका ब्रेकअप सॉन्ग कौन सा है। पर चलो, हम जब बात कर रहे हैं लगे हाथों हमारे जो रामायण के सपोर्ट स्पॉन्सर्स, इनको याद कर लेते हैं। सिल्वर स्पॉन्सर्स की ओर बढ़ते हैं, माया फूड्स 320 कैशल स्ट्रीट। आज हमने इनके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन शेयर किया है, तो आप भी अपना वीकेंड का शॉपिंग करना चाहते हैं 320 कैशल स्ट्रीट, माया फूड फॉर ऑल योर हाउस होल्ड आइटम्स, जैसे ग्रोसरीज हुआ, फ्रोजन कुछ हुआ, तो जा सकते हैं। इसके साथ साथ आर के बेंच टॉप्स, घर बना रहे हैं या आपको घर का मरम्मत करना है, अपग्रेड करना है, तो जरूर आर के बेंच टॉप्स, ये नाम जरूर याद रखिए।
1: जी हाँ, और चलते हैं हमारे ब्रॉन्ज स्पॉन्सर की तरफ, जो है रे प्रॉपर्टी मैनेजमेंट हारकौर जी, जो हमारे स्टूडियो में कुछ हफ्ते पहले आई थी एंड होपफुली नेक्स्ट महीने भी आएगी। सो अगर आपका कोई रेंटल प्रॉपर्टी हो या आप कोई रेंटल प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हो, तो या फिर अपना रेंटल प्रॉपर्टी टेक केयर करने के लिए या फिर रेंटल प्रॉपर्टी ढूंढने के लिए आपको कांटेक्ट करना है हारकौर फ्रॉम रे प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, जो आपका प्रोसेस बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी कर देंगे और उनका जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही अच्छा है। सो डू कॉन्टेक्ट रे प्रॉपर्टी मैनेजमेंट।
0: इनके साथ साथ हमारे सारे सपोर्टिंग स्पॉन्सर्स को याद कर लेते हैं, टच एंड ग्लो, पोती चोर, अंशु आंटी, हमारी प्यारी अंशु आंटी, इसके साथ साथ नीले धमलिया और MCK। टच एंड ग्लो के बारे में बात करते हैं, फ्राइडेज के शो में तो हम इनका जिक्र जरूर करते हैं, हर दिन इनके बैज में कुछ ना कुछ नया आ रहा है, जो यहाँ क्राइस्टचर्च के हमारी जो प्रिटी वुमेन है, जितनी लवली लेडीज, इनको और भी खूबसूरत बना रहे हैं, इनको और भी निखार रहे हैं, तो ये नाम जरूर याद रखिए, टच इन ग्लो। जी पोती चोर का रिसेंटली हमने एक वीडियो पोस्ट किया।
1: जी हाँ पोती चोर, अगर आप लोग नहीं गए हो और आप केरला फूड, ऑथेंटिक केरला फूड और साउथ इंडियन फूड के फैंस हो, यू गाइज हैव टू ट्राई पोती चोर, जहाँ पर मसाला डोसा, अप्पम, बिरयानी, अभी रिसेंटली चिकन मंदी, वेजिटेरियन ऑप्शंस, काफी सारे ऑप्शंस हैं। सो डू गो एंड ट्राई पोती चोर एंड द सर्विस इज एक्सेप्शनल एज वेल।
0: और MCK अमनीस कम्युनिटी केयर, हमारे फ्राइडे शोज में भी ये रहते हैं, तो आपको भी, आप किसी को जानते हैं जिनको केयर की जरूरत है, ये नाम मनीस कम्युनिटी केयर, नाम जरूर याद रखिए। नीला धमलिया एक अच्छे अकाउंटेंट की तलाश में, SBG अकाउंटेंट नीले जी, और इनके साथ साथ अंशु आंटी, इनको हम कैसे भूल सकते हैं, हर समय हमारे हर एक जर्नी पर कैजे को, कृष और जीबी को आंटी बहुत सपोर्ट करती है।
1: सोशल मीडिया पार्टनर्स की तरफ चले तो है ISCC इंडियन सोशल कल्चरल क्लब, जिन्होंने रिसेंटली एक बहुत ही शानदार गोल्डन एरा अंताक्षरी में धमाका मचाया था।
0: ट्रेंड बना दिया, क्योंकि ट्रेंड जब लोग बनाते हैं तो लोग ट्रेंड फॉलो करने लगते हैं।
1: जी बिल्कुल, सो ISCC ने एक ट्रेंड सेट कर दिया है जो काफी लोग फॉलो करेंगे, और कल भी हम एक इवेंट में थे जहां पर इसी अंताक्षरी के बारे में बात हो रही थी। एंड साथ ही साथ DNZ डिजीवर्स न्यूजीलैंड, गौरी जी फ्रॉम ऑकलैंड, अगर आपको कोई भी डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत है तो कॉन्टेक्ट

0: डिजिवर्स न्यूजीलैंड। रितु जी कह रही है, दिल पे पत्थर रखकर मैंने मेकअप कर लिया। रितु जी आप तो बिना मेकअप के ही इतने सुंदर हो।
1: जितने दिल इन्होंने थोड़ा होगा ना, वियान की माँ और प्रतीक पीपी प्रोडक्शन, मिसेस पीपी प्रोडक्शन, जितने हार्ट इन्होंने थोड़ा होगा ना, इनका स्माइल देखा,
0: सिर्फ आपकी सिंपलिसिटी से, सिर्फ आपकी, हाँ ऑफ कोर्स
1: यार,
0: सिर्फ आपकी सिंपलिसिटी था, आपको मेकअप की कोई जरूरत नहीं है रितु जी, वी नो हाउ नेचुरली ब्यूटीफुल यू आर। रेने प्रसाद जी कह रहे हैं राम राम जी। रशीदा चंद जी, हेलो फ्रॉम रॉलेस्टन। रशीदा जी आप रोलिस्टन में आए हैं। दिलेश जी कह रहे हैं हेलो माय ब्यूटीफुल कपल, हेलो हेलो माय ब्रदर। रशीदा जी कह रही है हाउ आर यू बोथ, वी आर रियली गुड, आई थिंक क्रिश जी वाज वेटिंग फॉर योर रिस्पांस।
1: हां रशीदा जी, हम कल इंतजार कर रहे थे आपका, भाई का और फियोना का, कि यू नो टेल अस वेयर आर यू गाइस, पर लगता है आप लोग कल भी बिजी थे, आज दिन में भी आपका कॉल नहीं आया। तो अगर जी हाँ कल भी हमारा कुछ इवेंट है, फ्री हो तो लेट अस नो, वी डेफिनेटली वुड लव टू कम एंड सी यू गाइस और टॉक टू यू गाइस।
0: मंगत हैरी जी All the way from Australia. Mangat
1: इनका ब्रेकअप सॉन्ग बताएंगे आज।
0: तो आज हमें आप बताओ कि आपने ब्रेकअप के बारे में लास्ट टाइम बात किया था, और कुछ लोगों ने अपने ब्रेकअप सॉन्ग्स का रिक्वेस्ट ऑलरेडी भेज दिया है।
1: ऑलरेडी दो तीन रिक्वेस्ट आ चुके हैं हमारे पास। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, ये रिक्वेस्ट फ्राइडे को आया था हमारे अच्छे साथी डीजे स्मिथ, इनके तरफ से। आई डोंट नो इनको ब्रेकअप सॉन्ग कहाँ से आ गया है, अगर हो सके तो प्लीज कोई सुमित और सोनी को जरूर टेक कर देना ताकि उनको भी पता चले।
0: जी
1: हाँ, तो ये
0: If you're watching us, please tag Sumit Bhaiya and Sony Di and let them know this is their breakup song. Unka breakup nahi, वैसे Sumit Bhaiya ka breakup
1: song. I just love Sumit. He's a DJ, so he loves these songs. So yes, you are listening to Radio KJ Local. We are bringing breakup songs today. Enjoy. This is Radio KJ Local only on
0: Plains Media 96.9.

0: Welcome back to Radio KJ Local. You're listening to us on Plains Media 96.9 with breakup songs today.
1: Yes, आज हम especially जो breakup songs हैं ये लेकर आ रहे हैं और काफी मजा आ रहा है उधर खास तौर पर से घर में Facebook Live पे हम आपके साथ जुड़ सकते हैं sitting with Vicky missing Anaconda. अच्छा यार तुम दाओ Vicky. अच्छा hello to Vicky. What's happening there, bro?
0: I really need to know. जिस तरह हमने frequency में जो सुन रहे उनको बता दिया कि हम Facebook Live पर भी हैं और हमें काफी सारे messages और काफी लोग Facebook Live पर जुड़ते हैं.
1: आपकी अफसरा ने कुछ पूछा है, कैन यू आस्क आपके भाई से, शायद आपको बता दे
0: क्या पूछना है
1: कि ये तुम अपनी सहेली को इतना बता दो ये सॉन्ग क्यों इनको पसंद है.
0: सुमित भैया, क्या आप हमें बता सकते हो कि आपकी परम सुंदरी ने हमें ये मैसेज किया है कि आपसे पूछे कि ये सॉन्ग उन्होंने क्यों रिक्वेस्ट किया है, तो अगर आप मैसेज में बता दो तो लोल आई वॉज लिस्निंग टू दिस सॉन्ग टूडे सिंस देन शी इज आस्किंग अबाउट इट.
1: अच्छा, क्या छुपा रहे हो
0: हमें भी बताओ सुमित भैया. वैसे अवी सामी जी सिटिंग कृषि के कजिन्स जो है वो भी हमारे साथ रेडियो केजे लोकल पर फ्राइडे और संडे शो में रिसेंटली जुड़ने लगे हैं एक्टिवली. पता नहीं कृषि ने क्या कहा है, जब से हम इंडिया गए तब से जुड़ने लगे और

0: ऋषि, आपने अब तक हमें ये एनाकोंडा वाला स्टोरी बताया नहीं।
1: आज हम आपको रास्ते में जाते जाते बताएंगे। आई थिंक आई मिस्ड वन सॉन्ग जो आपने यूट्यूब पे हमें दिखाया था,
0: वो दिलिश का रिक्वेस्ट था, तन्हा दिल तन्हा सफर ढूंढे तुझे। सो आपको हमें ये एनाकोंडा वाला स्टोरी बताना पड़ेगा। वैसे जितने भी लोग हमें फ्रीक्वेंसी पर सुन रहे हैं, आप लोगों को ये भी,
1: वो ना देवर लोग ना, वो शायद बता दे आपको।
0: हम तो पूछ रहे हैं कब से। अच्छा देवर जी, भैया जी, अन्ना, सब बता दीजिए कि ये एनाकोंडा वाला स्टोरी क्या है, और ये रिवर बॉयज का है या टेंपल बॉयज का स्टोरी है, ये भी बता दीजिए।
1: और सरस्वती जी, काफी दिनों बाद ना, शी वेंट समवेयर,
0: फिजी से वापस आ रहे हैं क्या, लेकर नकाई वकाई लेकर आ रहे हैं क्या, लेकर आ रहे हैं केकड़ा केकड़ा।
1: चलिए जी भाई, इस सॉन्ग का रिक्वेस्ट आई थिंक दिलिश अलिया द्वारा किया गया था, तो लेट्स प्ले दैट सॉन्ग। जितने लोग हमारे साथ फ्रिक्वेंसी पे या फेसबुक लाइव पे हैं, आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करना चाहते हैं। दिस सॉन्ग इज डेडिकेटेड टू आवर अलिया, लिस्टिंग टू रेडियो के जेलो कॉलोनी ऑन
0: प्लेन्स मीडिया 96.9।

0: Happy, जी हाँ, हैप्पी हैप्पी संडे एवरीवन. यस, आज शाम का जो आखिरी गीत था, आज आपने सुना होगा, हम ज्यादा से ज्यादा समय जो ब्रेकअप सॉन्ग्स ये लेकर आ रहे हैं. तो थैंक यू जितने लोग हमारे साथ फ्रीक्वेंसी पे जुड़े थे, वो फेसबुक लाइव पे जुड़े थे. जी जी, दैट्स इट, द लास्ट सॉन्ग फॉर दिस इवनिंग.
1: जी हाँ, एंड जितने लोग हमारे साथ फेसबुक लाइव पर भी जुड़े थे, आपको भी हम थैंक यू कहना चाहते हैं. हरजिंदर जी, आप अभी अभी आए हैं और हमारे जाने का वक्त आ गया, बट जितने भी लोग हमारे साथ फ्रीक्वेंसी पर जुड़ गए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे को 6 PM to 7 PM रेडियो KJ लोकल ऑन प्लेन्स मीडिया.
0: मंगा थेरी जी, आप हर वीक अपना समय निकाल कर हमारे साथ शामिल हो जाते हैं. आपको आपको दिल से शुक्रिया. ऑस्ट्रेलिया से हमारे साथ सुनते हैं. होपफुली इंशाल्लाह ऊपर वाले की दया से हम जरूर किसी ना किसी राह पे मिलेंगे. सो गाइस, दैट्स इट फॉर अनदर संडे. वी विल मीट यू गाइस ऑन फ्राइडे. तब तक के लिए ख्याल रखिए. दिस इज योर आरजे क्रिश साइनिंग ऑफ विद अ वेरी ब्यूटीफुल विद अ वेरी गॉर्जियस
1: आरजे जी. बाय.